गुणे हो होर नाही कोए ना को ना कोए जेवड़े आव तेवड़ तेरी दात जिंदन करके कीती रात।

दास जो सतगुर शरण संत नहीं आए त्रिक जीवे त्रिक जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तोर मस्तक लिखिया लिखास।

तत्काल कृपा दृष्ट तन जाय न हरियो ताके ताप तनक मोह हरियो ताके ताप तनक मैं हरियो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास वे सके न कोई।

तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागियो। सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी।

नित्य नित्य रख उरदारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

0: कुरकुरने सिंह साब रखे वैरी कुरकुरने
1: बड़िया मुसीबता सिरी सहारिया दसा जो जो खालसे ने मल्ला मारिया दसा जो जो खालसे ने मल्ला मारिया
0: फिर दुखा बाद पालिया राज खालसे मूल सने तारे सी व्याज खालसे मूल सने तारे सी व्याज खालसे
1: जिथे होए पाप साड़िया अटारिया जिथे होए पाप साड़िया अटारिया दसा जो जो खालसे ने मल्ला मारिया

तो ये सिलेक्शन ऑफ डेथ है, मौत दी पहचान कर लेनी, ये भी परम जीवन है। नहीं तो आदमी ने पता नहीं होता, जन्म का सारे ने पता होता है। पहला डॉक्टर भी दस दिन भी इस दिन बालक जन्म लेगा, जीव धरती ते आएगा, एंड का नहीं किसी को पता, अंत का नहीं पता। वैसे तो जन्म मरण दोनों वाहिगुरु ने अपने हाथ च ही रखे हुए ने, कले आवे नानका सदे उठी जाए। सानू नहीं पता असी किस तरह मरना है, साड़ी मौत किदां होनी, क्या जाना, किव मरेंगे, कैसा मरना होए, किसे नू नहीं पता। भी मैं मंजी ते पै के बीमार होके संसार तो रुखसत होना है, जां किते सड़क हादसे विच कोई एक्सीडेंट दे विच मेरी मौत हो जानी है, जां कोई हादसा होएगा किसी जगह पे, कोई ऐसा भाणा वरत जाए, कोई फायरिंग हो जाए, किसी नूं की पता है। बंदा घरों निकलिया होंदा है ते पिछों खबर आ जाती भी वह तो अकाल चलाना कर गया बंदा। मरना सच है, मरना सच, जीवना झूठ। तो जिन्हें मौत की पहचान नहीं की, गुरु कहिंदे उहदा जीवन भी किसी काम का नहीं। जे साहिब मनो ना विसरें तां सहला मरना होए। ते जिन्हें मौत की पहचान कर ली हुंदी है उन्हें पता हुंदा है कि मैं हरी दे द्वार ते मरांगा, मरो तो हर के द्वार, मत अर पूछे कौन है परा हमारे बार। संसार च बड़े लोग मरते ने, मरन मरन च फर्क है। कई बंदे मर के खत्म हो जाते हैं, कई मर के अमर हो जाते।

एक शब्द प्रिय भैणा वालों हुक्म है, गुरियो दिखायो लोए ना, ईतें ऊतें घट घट घट घट, तू ही मोहना। और इस तो बाद एक शब्द होर मंग कीती है, दूरों देख डंडौत कर छड़ सिंघासन हर जी आए। तो दो शब्द मैं पढ़ांगा, उस तो बाद फिर कीर्तन की समाप्ति है। बहुत शुक्रगुजार हाँ ये दोनों बच्चियां वायलन देते, बीबी इशमीत कौर जी जो कि बड़ा खूबसूरत वायलन बजाते ने, मुश्किल साज आए। मैं भी ट्राई कर रहा एक साल तो कोशिश कर रहा, तो इन्हें गुरु साहब की बड़ी कृपा है। अच्छे उस्ताद हैं प्रोफेसर दलबीर सिंह जी के कोलों इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और तुहाडी नज़र लैण वास्ते आशीर्वाद लैण वास्ते आते हैं। दूसरी बेटी बेटी स्नेहा कौर ये दिलरबा से संगत करती है, भी बहुत सोहना दिलरबा बजाती है, बड़ी सोहनी आवाज़ इन्हों सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की है, बड़ा सोहना कीर्तन भी करते हैं। तो इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि साडे नाल संगत करते हैं। हमेशा ही असी जदों इसे दीवान करन आउंदे आ तो ये बच्चियां दोनों ही साडे नाल संगत करदियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हों की कला में होर निखार बख्शिश करे, बुलंदी बख्शिश करे, और इन्हों चढ़ती कला सतगुरु जी प्रदान करे।

नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमलना ने एक पद गंध बिन सहस तव गंधेव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावे सो आरती होए हार चरण कमल मकरंदलो भित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजुली पुन

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

अंदर सच्चा ने हूं लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जागुर देखा सामने तन मन हुए निहाल जागुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया एहलस सहज सुभाए

साहिबजी गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माय मिटावो सिमरो जास बसमर एक नाम जपत अगंत अनेक वेद प्राण सिमर सोदाखर किन्ने राम नाम के आखिर किनका एक जस जीव सावे ताकि महिमा गनी नावे आंखी एक दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पगजना के मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्व नाम से प्रभ के सिमरन दुख जमन से प्रभ के सिमरन काल पर हरे प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कश बिघन न लागे प्रभ के सिमरन अंदन जागे प्रभ के सिमरन पौ ना व्यापै प्रभ के सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद सिद नौ निद प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जपता पूजा प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ के सिमरन दरगे मानी प्रभ के सिमरन हो सो भला प्रभ के सिमरन सोहल भला से सिमरे जने आप सिमराए नानक था कह लागो पाए प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभ के सिमरन सबके सुजय प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रित माए समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पदवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा विनाशी सिमरनते लागे जने आप दयाला नान जन की मंगेर वाला प्रभ को सिमरे से पर उपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख विहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपाते अंदन जाग नान सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कार्ज पूरे प्रभ के सिमरन कबू न झूरे प्रभ के सिमरन हर गुण बानी प्रभ के सिमरन सह समानी प्रभ के सिमरन ने चले आसन प्रभ के सिमरन कमल विगासन प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जन को प्रमे आ नान तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पै सिद जति दाते हर सिमरन नी चौ कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन में आपनकारा कर कृपा जस आप

सात श्लोक आगम गाद पारम सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना किया चर्च कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल संगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभनेरा साध संग सब होतन वेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संगे को ऊपर जतन साध के महिमा बढ़ने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी साध के संग उच्चर मिले साध के संग सदा प्रफुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हूं तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कैसा महापुनीत साध संग कैसे नहीं बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाई हो ताप साध के संग तजे सव्या व्यापे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बनियाई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बसत गोचर लहे साधु के संग अजर सहे साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पूछे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब को लोदारे साध संग साजन मीर कुटम नितारे साधु के संग सोतन पावे जिस तंते सको बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सुवा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सर्व सफल जन्म साध के संग नहीं किस काल दर्शन पेट तो उतने आल साध के संग कलुक धरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यावा सुहेला साध संग बिचर तर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुंगाओ साध के संग नमंते विसरे साध संग सरपण निस्तरे साध के संग लगे प्रमीटा साधु का संग घट घट डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गात पे ही हमारी

ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल न लगे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगा। जैसे धरि उपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी कह नाय अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन पर आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सरल गिरी ना आत्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर में आ। ब्रह्म ज्ञानी ते किस बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग। ब्रह्म ज्ञानी कह बसे, ब्रह्म ज्ञानी कहत नाही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत मंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला। ब्रह्म ज्ञानी सबल भला,

तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न लागे कोए उस्तत मन में करन कार कर मन मेरे सद व्यवहार।

तस्मिन्दु सरोवन होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सप्ते उस निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नान सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रती तिस जन आवे हर पव चीत भगत भगत सुनिए त्रिलोए जाके हृदय इको हे सच करनी सचता की रहे सच हृदय सतमुख कहत सच चीत रि सच आया कर सच वरते साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किस त्रै गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानु की तुम प्रीत त्याग तिस्ते परे नाए किसको हे सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल प्रक्षण सा तेरे की चरणी पाओ नानक के मन अरनाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपा ऐसोई होग हारन पर जाका नेत्र भोर जिसका मंत्र ना जाने होर अनध्रुव मंगल सज्जा के सर्व थोक सुनिया करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी त्याय त्याय भक्तां सुख पाया नान तिस प्रका किने अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाए सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सो मत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम त्यावे से तय गुण में जाको परमाए जन्म रे फिरे आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेक रेक रंग नाना मितकीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिनमाए पूरे हो पून सब ढाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई साब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान घर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मण नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे गास्पताल नाम के तारे सगल कार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदय सुन सरमन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जागी बाणी सत पुरख सब माय समाणी सत कर्म जागी रचना सत मूल सत सत उत्पाद सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रकाश सुखदाय विश्वास सत नानक कृते पाई सत वचन सत उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी शिष्य करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कीमत न जाने किया नान जो तिस भावे सो वरतिया

Also mein, जो हो आहो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पैर प्रभ से जुरे कौन आने से जन पूरे मन मेरे तिन की ओटले मन तन अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व धोखा दाता तिसके सरण सर्व सुख पावे तिसके दस सब पाप मिटावे अब सयान सगली छाड़

जय भाई कुछ तनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पोचित प्राणी गम गोचर ब्रह्म निर्वाणी निरा निर्वैर सदाई धागी कीमत गिन न पाई अनक भगत बंधन नित करे चन कमल हृदय सिमरे साध बलियारी सतगुरु अपने नाने जिस प्रसाद।

जब अपनी शोभा अपने संग मनाए तब कवन माए बाप मित्र सुत भाए जय सर्व कलाया पे प्रवीण तै वेद देव का कहु चीन। जब आपने आप उधारे तो सगन सगन का हम विचारे जय आपन ऊंच आपना मनेरा तय कौन ठाकर कौन कहिए चेरा विष्णु विष्णु रहे विस्मात नानक अपनी गत जानो आप जय शल छेद भेद समाया हुआ किसे व्याप्त माया। आपसको आपे आदेश तय गुण का नाई प्रवेश जय कह एक एक भवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपने आप पति आरा तय कौन कदे कौन सुनने आरा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानक आपसको आपे बहुचा। जय आप रचे प्रपंचकार तय गुण में कीनो विस्तार पापुन तय पे कहावत को नरको स्वर्ग पंचाव दयाल जाल माया जंजाल हमे मोह परम पे पार दुख सुख मान अपमान प्रकार की अभिख्यान। आपन खेल आप कर देखा खेल संकोच तो नानक कह जय अवगत भगत तह आप जय पसरे पसार संत प्रताप। दोहो पाक आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे नंचोज आपे रसभोगन निर्जोग जिस भावे तिस आपन।

पाए जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उभरे राखण आर त्याए। निरभउ जपै सगल भउ मिटे, प्रकृपा ते प्राणी छुटे। जिस प्रभु राखे तिस नाहीं दुख, नाम जपत मनो वसुख। चिंता जाए मिटे अंकार, तिसन को कोई न पहुंचन हार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नान ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन भेख दूदर शिष्ट। चन कमल जाके अनूप, सबल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसे सो होत न्याल, ता कह निकट नावधकाल। अमर पै अमरावत पाया, सा संग नानक हर त्याया।

Господи, पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सासन रोगो बिंद मन अंतर की उतरे चंद आसन त्यागो तरंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हरतन के पर ले भंडार नान गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग परमानंद नरक निवार उधारो जीओ गुण गोविंद अमदरस पियो चचत वो नारायण एक एक रूप जाके रंग नेक बाल दमोदर दीन दयाल दुपन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल रतन संत कुमावत हो तो उधार आप दरे लोका निस्तार सबल जीवन सबलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाथ वाजे सुन सुन अंद करे प्रगवाजे पर ढेग पाल महात के माथे नानक उदय तिनके साथे सन जोग सुन सुन नी आए कर कृपा प्रभ्या मिलाए मिट गए बैर पे सब रहे अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हो सेवक की सेव आल जाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभदारी नानक ने भी खेप मारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान का गरचीत

झूठ कहो क्या गणी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे तुरमतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जीतिया ऐसा बाजी संसार ना चीते हरनामा खिन में बिन से सब झूठ मेरे मन त्याय रामा रहो सावेला चित न आवे जित आए कंटक काल ग्रस तिस नानक ले छाए जिस कृपा कर हिरदय वस तिलंग महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर कर दंग आलम दुनियाए आसमान जिमी दरख्त आव पैदाइश खुदाई बंदे चश्म दी दंग फनाए दुनिया मुर्दार खुरदनी गाफल हवाए रहाओ गैवान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए दिल कब्ज कब्जा का दरो दो जख सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए जब अजराइल बस्तनी तब ची करे विदाए हवाल मालूम कर दंग पाक अल्लाह भुगो नानक अरदास पीस दरवेश बंदा तिलंग कर दूजा महला पंजवां

जी सगल को दे दान रहाओ। तू काहे डोले प्राणिया तो दराखेगा सिरजनहार, जिन पैदा इस तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, घट घट मालक दिलां

साई गल चंगी तिलंग महला नौवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद विहात है फूटे कट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावही मूरख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मर्म पछाना अज हूं कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निरपै पद पावे तिलंग महला नौवा जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहां गाफल सोया जो तन उपजा संग ही सो भी संग हो न होया रहो मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना जियो छुटियो जब देते डार अगन में दीना जीवत लो व्यवहार है जाको तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुफन समानो तिलंग महला नौवा हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीतो जात है कहो मान ले मेरो राव संपत रथ धन राज सिंह अत निहो लगायो काल फाज जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ के बावरे तै काज बिगारियो पाप करत सुकच्यो नहीं न गर्बन विवारियो जे बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरणाई तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेद कतेव इफतरा भाई दिल का फिक्र न जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे ए जो दुनिया सिर मिला दस्तंगीरी नाही राव द्रोग पड़ पड़ खुशी होए बे खबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक मियाने स्याम मूरत नाहे आसमान मियाने लहंग दरिया गुसल करदन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जय

देर तक जो कह रही है, वट एवर द गुरबाणी इज सेइंग, इफ यू विल नॉट डू इट, गुरबाणी कहे सेवक जन मन, जिनी देर तक मनेगा नहीं, मने की गत कही ना जाए। केंदे जिनी देर तक मनेगा नहीं, अपनी जिंदगी दे विच उदा तुरेगा नहीं, ते फिर उन्नी देर तक बाणी ने भी असर नहीं करना गुरु प्यारे हो, क्योंकि असी अपने आप नू समझे ही नहीं कि बाणी कादे वास्ते पढ़नी सी, बाणी पढ़ के आपां करना की सी। महाराज कहिंदे पढ़िया मैल ना उतरै पुछो ज्ञानिया जाए, कहिंदे सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं गुरबाणी नू पढ़ पढ़ के मैल उतरनी, जो गुरबाणी कहिंदी है वह करना पैना है। ते मन मन की गल महाराज करते बार बार, ते मन कहिंदी गल करके कहिंदे मन मेरे गुर शरण आवै ता निर्मल होए, कहिंदे जिनी देर तक गुरु की शरण च नहीं आता, वी हैव टू सुरेंडर आर सैल्फ फ्रॉम इनसाइड, आर माइंड हैज टू सुरेंडर। अगर असी सिमरन भी बारों बारों कर रहे हैं, बाणी भी बारों बारों पढ़ रहे हैं, उहदा भी असर नहीं होना। महाराज कहिंदे मनमुख हर हर कर सके कर थके मैल ना सकी तोए, कहिंदे उहनां दी मैल भी नहीं उतरनी, क्योंकि मालक नूं पुछ पुछ के मैल धोनी सी, अंतर मैल लगी ना जाने बारों मल मल धोवै। कहिंदे अंदर दी मैल ते इहनूं समझ नहीं आई, ही हैज नॉट रैकोगनाइज द फिल्थ ऑफ द माइंड, बारों पवित्र होई जा रहा, बारों कर्म कांड करी जा रहा, वक्खो वक्खरे कर्म करी जा रहा, कहिंदे होमे दे विच करी जा रहा, जग होमे मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए। कहिंदे होमे दे विच सारे कर्म कर रहा है, मन होमे धोती किवें ना उतरै जे सो तीर्थ ना आए। कहिंदे भावें तीर्थां ते चले जावे, उते इशनान कर लवे, गो टू द पिलग्रिमेजेस एंड टेक अ बैथ देयर, वह भी बाहर की मैल है, अंदर की मैल तां भी नहीं निकलनी। बोबिद करम कमाव दे दूनी मल लागी आए, कहिंदे होर मैल सगों होर चंबड़ जानी है, कि मैं ते जी पाठ करदा, मैं ते जी सिमरन करदा, मैं ते तीर्थां च नहाउंदा, उहदे नाल होमे दे नाल होर मैल चढ़ी जानी चढ़ी जानी, मैं ते अमृत वेला करदा। कहिंदे पढ़िया है मैल ना उतरै पुछो ज्ञानियां जाए, कहिंदे ज्ञानी कौन है, कहिंदे ओह ज्ञानी जिन्हां ने गुरबाणी कहे सेवक जन मन, ओह सेवक बन गए, सुरेंडर करता अंदरों दी, बाहरों नहीं सिर्फ अंदरों दी। ते जिनी देर तक गुरु प्यारे हो असी अंदरों सुरेंडर नहीं करना, वो किवें करना वै, ते महाराज ने सानू तरीका दस्या जपजी साहब दे विच ही, गावीए सुनीए मन रखिए पाओ, क्योंकि जिहड़ी गेम है ना खेड, वह मन दी है, बाणी दी भी यही जुगती पढ़न दी, सिमरन दी भी आही जुगती। कहिंदे आपां मुखों गाउणा है, कन्ना तो सुनना है, प्यार दे नाल प्यार दी जुगती, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अगर प्यार ही नहीं, ते बाणी भी पढ़ी जा रहे हैं, सिमरन भी करी जा रहे हैं, ते मन दे विच होमे है, फिर मैल नहीं उतरनी। ते जदों गुरु साहब ने कृपा कीती, जदों सानूं समझ आ गई दैट वी हैव टू चैंट फ्रॉम आर टंग, लिसन फ्रॉम आर ईयर्स विद लव, कन्ना तो सुनना है, जीबा तो गाउणा है प्यार दे नाल, सरवणी सुनीए रसना गाइए हिरदे ते आइए सोए, ध्यान अपनी आवाज दे विच रखना है, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख कत कहानी, फिर कहिंदे तैनू तेरी जीवन तेरा सफल है, फिर तू अपने आप नू पहचान लेगा, क्योंकि शरीर मिले ही ऐसे पिछे सी, पई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। कहिंदे वी गॉट दिस फिजिकल बॉडी सो दैट वी कैन मीट वाहिगुरु, साडे जिंदगी का परपोज ही आही है, ते असी प्यार दे नाल मालक नू जे असी चाहुंदे आ, असी मालक नू देखना है, अपनी आवाज नू सुनना है, बाणी पढ़ना है पढ़नी है, ते सुनना है, सुनिया मनिया मन कीता पाओ। ते कहिंदे ओही तीरथ है अंतरगत तीरथ मल नाओ, कहिंदे तीरथ ओही है, अंदर ही है तुहाडे तीरथ, उहदा इशनान करना है, आपां सिमरन करना है, जदों मैल उतरेगी फिर महाराज कहिंदे तू पछाण लेगा अपने आप नू,
मैं लथे की जो मन सहज जाएगा नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी। होमे की मैल उतरेगी तां पछाणांगे आपां कि आपां शरीर नहीं, वी आर नॉट द फिजिकल बॉडी, वी लिव इन दिस बॉडी। आओ जी असी भी कोशिश करिए, दो मिनट ही है साडे कोल अपने आप नूं पछाण करन दी। वाह कहना सुनना, गुरु कहना सुनना, बड़े प्यार दे नाल आओ जी।

सीपी सच सोचाय सोच ना हो भई दे सोची लाख बार छुपाए चुप ना हो भई दे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी दे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो है ता एक ना चल नाल केव

आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पा।

ताय कागद कलम न लिखनहार मन्ने काबे करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन के सद्ध

एको कवाओ तिसे होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तद पावे साई परिकार, तो सदा सलाम निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख रंध मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सुरमो पाख सार, असंख मोले विलाय तार। कुदरत कम

वार दुतुपावसाई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार अपरिये हाथ पैर तंदे पानी तुत उतर दिखे मूत पलिति कपड़ो।

सदा मन चाओ कवन सवेला भक्त कवन कवन तत कवन वार कवन सिरुत महा कवन जितो आकार वेल न पाया पंडित दे हो वेले पुराण भक्त न पायो का दिया दे लिखन ले कुराण थे त्वार न जोगी दान रुत महान कोई जा करता सिरठी को साजे आप दान सोई किव करे आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नान के आखण सब को आख्या एक दो एक से आना वड्डा साहे वड्डी नाई किता जाका होवै नानक जेको आपो जाने अगे गया ना सो है पाताला पाताल लख आगास आगास ओढ़ के ओढ़ पाल थके वेद कहन कवात सह से अठारह कहन कतेबा असलो एक तात लिखा हो ता लिखिया लिखा हो विनाश नानक वड्डा आखिया आप जाने आप साला हे ते सुरत न पाईया नदियां ते वा पवे समुद न जानिया समुद सा सुल्तान ग्रह से माल तन कीड़ी तल ना हो नी जे तस मन हो ना विसरा अंत न सिवते कहन ना अंत अंत न करना देण ना अंत अंत न वे

ना सका कोई जेको खाए के आखण पाए ओ हो जाने जेतिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखा सब के जिसनो बख्शा सब

ताकि अगला कतिया न जाहे देखो कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सदा की शुद्ध कर्म खंड के बाणी जोर तिथे हो न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिनमें राम रहा परपूर तिथे सी तो सीता महमा माहे ताके रूप न कसन जाहे ना ओह मरै न ठगे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै कह लो करै न सच्चा मन सोए

अमर वरताया। हे माया जित अर विसरै मोह पजे भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे।

रचन रचिया सोहर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सत गुर स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवरना देखो कोई हर बिन अवरना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो बिस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवरना कोई कहे नानक नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई ए सरवनो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी।

प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी किना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नव निध तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया।

परमेश्वर वणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही आगे सुख मेरे मीता पासे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर वणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही साचे साहेब स्यो मन मनिया हर सर्व निरंतर जानिया रहा।

नारते अवजा सर्गो जिदो सो अखद अवखद मैं भाई जहां जहां तो नद टेके नहग टकाओ मोहे तेरे नाम अवलम बहुत जन दे नामे की निज मत हे गॉड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय कैली पानिया बिन मीन तलफे ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहो जैसे गाय का

जमे रहो हर हर नाकश हरे बुरान अजमल कियो बैकुंठ स्थान सुहा बड़ावत गणक तरी सो हर नैनो की पुत्री हर हर गर्द पूतना तरी बाल गादनी कवटे परी सिमरत द्रौपद सोतरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जनपिया जी दान काली गोदिया प्रण में नामा ऐसो हरी जास जवद पै अबदा टरी गांड भैरो पूत सीतरा दावे खर बांधो शार डावे हाँ तो एक मैया ले हूँ आन देव बदलाव देहू राव सेव सेव करते जो नर दावे बर्द चढ़े डोरू नमकावे महामाई की पूजा करे नर से नार होय दरे तू कहिए दही याद भवानी मुक्ति भरिया कहाँ छिपानी गुरमत राम नाम गौ मीता प्राण में नामा यो कह नीता बलावल गौड आज नामे मिडल देखा मूर्ख को समझाओ रे रहो पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टंगी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा मां दो तौले बंद चढ़े आप देखा था मोदी के घर का खाना बाका बाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद्र सो भी आव

0: रावण से थी सरबर हुई कर की जो एक वाई थी हिंदू अन्ना तुर्को गाना दोहा दे ज्ञानी सियाना हिंदू बुझे देहरा मुसलमान बसीद नामे सोई सेविया जय देहरा नाम सीध राग गांड बाणी रविदास जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए ओ हार सोई मुकंद मौत का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक हो सदा आनंद रहो मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मर्त ने सानू से मुकंद करे बरागी सोई मुकंद दुर्लभ तन लागी एक मुकंद करे अवकार
1: कीर्तन